0: अज मेरे बेटे की पहली बर्थडे पार्टी है, दिल खोल के खर्चा किया है।
1: बहुत बढ़िया यार, पर एक गल दस, तू अपने बच्चे की RESP करवाई है?
0: नहीं तो
1: भाई RESP तुहाडे बच्चे की सुरक्षित भविष्य की चाबी है। अज ही ऑल काइंड इंश्योरेंस तो गुरजीत सूरी नू कॉल करके RESP करवा। इना कोल क्रिटिकल डिसेबिलिटी ते स्टूडेंट इंश्योरेंस दे बेस्ट प्लान्स भी।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं पता तुसी सारे की ये कविता बहुत अच्छी लगी है क्योंकि है बड़ी अच्छी बड़ी मीनिंगफुल है। पर इस कविता के माध्यम कला मैं स्नेहा देना चाहनी हाँ साढ़े पढ़े लिखे समाज है जो अज भी कुड़िए ते मुड़े च भेद करते हैं। अज भी अगर उन्हें पता लगी हाँ कि ये कुड़ी होने वाली है तो मिनट नहीं लाते उसी खत्म करने च। अज भी कोई ना कोई टब्बर ऐसा है जिथे अज भी मत्थे टेके जाते हैं कि कुड़ी नहीं हो तो मुड़ा हो। अज बड़ी तरक्की भी हो गई है तो बड़े सारे परिवार एक एग्जाम्पल भी सैट करते हैं उन्हें कुड़ियों के जमने पर बड़ी खुशी मनाई जाती है बड़े अच्छे तरीके करने सैलीब्रेट करिए समाज ही स्नेहा भी देंगे दें। पर फिर भी बिलीव मी अज भी उ लोग हैं जो पढ़े लिखे दिन पर फिर भी कुड़ियों तो मुड़ियों भेद करते हैं तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि उनके घर मुड़ा के जमे कुड़ी नहीं हो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अस गल करा दे हे दुग प्रदेश दी तीएं दी, तीएं ते मुड़े चोने आले पेट पाओ दी। मैं आज तुंदी आरजे डोगरें दी ती नी। हाँ, मेरा ट्विटर अकाउंट है डोगरन सोल करने, तुस उत्थे मैं फॉलो करी सकते हो। ते अगर अज दी तीआं अगर झांसी दी रानियां ते ओह सती ते सवित्री दा भी किरदार हन, हर तरह दा एक मल्टी रोल प्ले करदे हन अज दीआं तीआं। ते मैं तां गई इस रेडियो दे माध्यम तुंदे सारे कोला फिर रिक्वेस्ट करना चाहनी हां कि कुड़े ते मुड़े च बिल्कुल भेदभाव बंद करिए, उन्हें बराबर दा दर्जा देइए। ते उन्हें तुस ये मेरा स्नेहा अगे भी शेयर सारे जरूर करियो। ते हुण मैं इजाजत दियो, मेरे जाने दा टाइम हो गया है। फिर मैं परतिए मिलगी तुंदे कन्ने एक नवी और कोई पेशकश दे कन्ने। बाय बाय, टेक।

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878
2: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा मैं कोई यूज ट्रक ही ले लवां पर समझ नहीं आउंदी भी कित्थों लवां
3: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
4: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल बिल सेखो 416-819-6000
5: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो तां कैन ट्रक नु कांटेक्ट करो थोड़े कोल एजेड लाइसेंस होना चाहिदा है थोड़ा सीवीओआर बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है कांटेक्ट ले नंबर है 647-292-5757 647-292-5757
6: ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਬੇਫਿਕਰ
7: ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਲਾਨਸ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ RESP ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗਰ ਨੂੰ 647-765-2340 647-765-2340
8: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/EAP
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. वॉच सक्सेसफुल IPL सीजन ओनली ऑन करो स्ट्रीम. www.karostream.com और कॉल 905-204-1313.
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी. ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी. हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ. चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड. ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन. ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900.
2: आज दे समय विच हर मापे दी एहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच भी अग्गे होवे ते अपनियां जड़ां अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे. इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोविंद सरवर स्कूल. साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओ है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान, दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे. बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाने लई वचनबद्ध है गोविंद सरवर स्कूल. गोविंद सरवर ब्रैम्पटन दी नवी लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट. जेके तो ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 905-458-6222.
3: भाई ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां.
4: ओए इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ. ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेख नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं.
5: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो. अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन. कॉल विल सेखो 416-819-6000.

0: 1230.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32 55 80
2: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है 12x30 फुट दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है पिछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222

गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं थोड़ा अज का दिन अच्छा गुजरा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी कि दो बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरों ना तुहानूं जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखी निजी साहब प्रोग्राम पेश करनगे वतनों दूर, सो स्टूडियो नाल जुड़े रहना। साडे स्टूडियो दे जिहड़े नंबर आ दो बजे तक यही रहणगे 905-799-0999-799-0999।

0: फंडिंग दे सकती है, और उसमें से अलग से 7 मिलियन क्यों दिया है जो प्राइड इवेंट हुआ है उसमें सिक्योरिटी के लिए, $7 मिलियन मतलब 5 घंटे के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए। सब गवर्नमेंट वहां पैसा लगा सकती, गवर्नमेंट एजुकेशन में पैसा लगाती है। सर आप 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें जिसका हाफ पोर्शन आज की डेट में ग्रांट है, ग्रांट उसे कहते हैं जो नॉन रिफंडेबल है, फंडिंग आपके अकाउंट में आती मेरे अकाउंट में नहीं आती, और इसमें से अगर फैमिली ऑफ 5 है तो अप टू 100,000, फैमिली ऑफ 2 है रिटायर्ड कपल है या यंग कपल है अप टू 45,000 की फंडिंग आती है, उसमें से हाफ पोर्शन तो ग्रांट है, वापिस ही नहीं करना सर। बाकी कहते हैं इसके बाद एज लिमिट कुछ है नहीं, आसान से कोर्सेज है जो हमारे क्लाइंट लाइक करते हैं, फुली ऑनलाइन है, फोन पे लगाएं चाहे लैपटॉप पे लगाएं, 2 से 3 घंटे आपने देने पूरे दिन नहीं लगाना, और असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है। हमारे पास हार्ड कोर्सेज भी है HVAC जैसे, जिसमें आपका इनपुट ज्यादा लगेगा, अर्ली चाइल्ड असिस्टेंट PSW, वो भी गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट ही फीस पे कर दी, गवर्नमेंट आपको फंडिंग आपके खाते में दे दी है, आप अपना खर्चा चला पे पड़ते हुए पढ़ते सड़क पे ना आ जाए, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन खराब ना हो जाए।
1: भाजी थोड़ी फीस हुण तुसी जिवें हुण दिन थोड़े रह गए, तुहाडे कोल वर्कलोड वध गया होणा ओबवियसली, ते कॉल्स भी बहुत सारियां आउंदियां ने, स्टाफ भी तुसी हायर कीता, घंटे भी तुसी वधाए ने, ते तुहाडी फीस तां नहीं तुसी वधाई उहदे करके?
0: फीस अभी नहीं, फीस नहीं बढ़ाई हमने, हमें कोई लालच नहीं है, क्लाइंट्स आगे कह रहे थे कि फीस बढ़ा दो।
1: हाँ।
0: अभी फ्राइडे को कहते सर आप किसी और पे गया था $1,000 मांग रहा है, उससे पहले किसी और पे गया 2500 मांग रहा था अपफ्रंट।
1: जिम्मेवारी बन दी है दिमाग जिन्ने क्वेश्चन जाके टेबल जाके बैठ के करो गलबात करो, सो ऐ नहीं है मैं कह दूंगा कर लो एनू ना करो, मैं मेरा फर्ज सिर्फ सुनेहा देना। क्यों नागपाल साहब अज तक कोई सिफारिश कोई कुछ कहा तो नहीं कदम?
0: बिल्कुल जी कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ आपके पर्सनल कैपेसिटी में कम से कम 10-12 बंदों का काम हो चुका है।
1: हाँ बिल्कुल, जिन्होंने आगे उन्होंने इन्होंने धन्यवाद किया, मुबारकबाद दी है कि भाई थोड़ी फंडिंग हो गई है, क्लासा उन्होंने चल पी ऑनलाइन नाले, तुसी जेकर ऑनलाइन क्लासेस लाउणी है नाले तुहानू सरकार पैसे दिंदी है, तो वह ग्रांट है जी मेन वड्डी गल, तां सुनेहा बार बार देंदे कि भाई ग्रांट बंद हो जाणी है। सो नंबर नागपाल साहब जरूर दे दिओ जी,
0: नंबर जी 437-264-31-75 हुणे कॉल करो तां एस्टीमेट चक्को जी, 437-264-31-75। असली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके NOA नोटिस सस्पेंड बर्थ सर्टिफिकेट, कोई हेराफेरी है ही नहीं इसमें। 437-264-31-75 437-264-31-75।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, 437-264-31-75 437-264-31-75 437-264-31-75 बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो लो माल साहब जाते जाते भी अपना नंबर साझा कर दो
2: जी, 647-627-88-20 फॉर ऑटो इंश्योरेंस।
1: भाई कल 2 बजे रेडियो ऑन कर लियो, सुरीला होगा, सुरीली शाम होनी है, कल 2 से 3 सुरां खेडन गियां हवा दे विच, बहुत सुरीले कलाकार साडे स्टूडियो दे विच पहुंचणगे, बहुत कमाल दे जिहड़े मतलब तुसीं मंत्रमुग्ध कर देणगे, तुहानूं सुरां दे नाल खेडोगे कमाल होगा यार। कल तुसीं बस ऑन कर लियो 2 से 3 अज दे प्रोग्राम दे विच, मैनूं इत्थे इजाजत दे दिओ। मोना मेंगी जी दा नंबर तुसीं नोट करके रख लो, 416-509-1509 लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इंश्योरेंस लई मोना मेंगी जी, 416-509-1509 ते तुसीं इन्हां नाल संपर्क कर सकदे हो। अज दे प्रोग्राम च दिओ इजाजत बाजी, रब राखा, सत श्री अकाल जी।
3: घर तो आप एडा वड्डा इन्ना सोना ले लिया है, हुण अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं।
4: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, LED टीवी सब इथों ही लवांगे, इन्ना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनी। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीनिया च करनी है, वो भी बिना किसी ब्याज दे, होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828
5: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.